तेरे दर्शन को हम बारे। आप जी दी पवित्र बाणी विचों ए शब्द किवें अकाल पुरख तो सदके जा रहे हैं, किवें बलिहार जा रहे हैं। आख्या

प्रभु परमेश्वर दा नाम जपया करो, हर वेले नाम ही सिमरिया करो और परमात्मा दा नाम अमृत पींदे रहा करो। साई फरमाउंदे हन।

वर्ष वह करके अरसात समुद्र की मन कह हो काट वनस्पति सगरी दिख बहु के लेखन काज बन हो सारसता पकता करके जब कोट गणेश के हाथ रखे हो काल कृपा ना बिनती काल कृपा ना बिनती ना तो तुमको सब नए कर बेसुमार भे अंत स्वामी तेरो अंत न कूट बराद हमारे खंडो कूट बराद हमारे खंडो अनक विधि समझाओ अनक विधि समझाओ हम अज्ञान अलक मत थोरी तुम आ

जो गुरुमुख प्रवाह थे बाबा जी ने महान भक्ति की थी और आज जो भक्ति है पर ए माया गुरु ना जाए और कहीं माया डंग भी नहीं दी है माया हो कि वास्ते नागरी है जिन्होंने गुरु बन गए। जवाब दे दिता बेचारा ब्राह्मण वापस आया साहबां दे दरबार च मत्था टेकिया रो पिया कह लगा महाराज हजूर कह लगे सुना मिल गया भाई गुरु भी है रो के कह लगा महाराज ये तुहाडा गंगा राम ना कोई लैण देण नहीं सी तां मैनू क्यों इतनी दूर भेज हजूर कह लगे नहीं मिले भाई महाराज वो तो अहंकार च बोलता हजूर कह लगे कोई साहब जी चादर दी बुकल मार के बैठे सज्जा हाथ कढ़िया इस तरह करके मुठी मीट के जेब च पा ली तो कह लगे अगे तो साडा गंगा राम ना लैण देण सी गुरु नानक सी सा ते गंगा राम सी कुमास्ता जो आप कहता तो अज तू लैण देण कोई ना फिर जिस तरह बटन उपर कर दई फौरन नेरा हो जाता इसे तरह प्यारी सात संग साहबा ने जिसे ने बख्शन वाला बख्शिश वाला बटन जरा सी उपर किया फिर उसे तरह घाटे आखो श्री है सतगुर सेती गणत जो रखे हर पलत सब तिसबा गया मित चहिया उपावे चकू सुते चखदा चखदा ओ चढ़ पया मित उपाव करे माया धर्म कारण अगला तन भी उड़ गया क्या ओ खटे क्या ओ खावे जित अंतर सहसा दुख पया निर्वैरा नाल जो वैर रचाए दे ताप जगते का तिन सिर लिया उन्हें अगे पिछे तो ही नहीं जिन्हें अंदर निंदा मोहम पया हजूर कहते जे सोने नू असलावे ता क्यों देती हो मालिक दी मेहर ना आवे ता सोना मिट्टी हो जाए ये बख्शिश का बूढ़ा खुला हो तो मिट्टी सोना कंगाल हो गया फिर गंगू बन गया फिर मैं दर दर छोकरा खांदा सोचिया हुण किधर जावा ख्याल आया मना तो ता गुरु तू अपने आप नू तोड़िया तू तो गुरु तू बेमुख होया है पर गुरु बख्शंद है फिर गुरु बोल गोइंदवाल साहब आ गया साहबा दे मथे नहीं लगा सीधा लंगर च पहुंच फिर सेवा शुरू कर छह महीने फिर सेवा की साहब जी फिर अज लंगर आ गए ओ गंगा राम तेनू तो सेठ बनाया सी इसे किस तरह हुण चरना ते कह के रोज लग गए ऐ पातशाह तू देव सब कुछ दयाधार हम आकिर्त मैं आकिर्त कर तेरिया दाता नू पा के तेनू भुल गया था मैनू बख्श हजूर कह लगे गंगा राम रो ना तो छह महीने मेरे सिखा की फिर सेवा की है एक बारी फिर मंग लिया आखो श्री गुरु केड़ा चालू ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਧਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਆਓ ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗ ਵੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਰੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਅਰਦਾਸ ਪਹਿਲੇ ਸੇਵ ਖੋਲੇਗਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ

दुष्ट दमन तू संसार तेजा। कहिंदे ने मेरा मन नहीं करदा तेरे चरणा तो, पर हुकम भी मनना है, पर बार बार कह रहे ने मेरा दिल नहीं करदा किसे होर दी ड्यूटी लाओ। प्यार नाल सत्कार नाल किसी जोर जबरदस्ती नाल नहीं, थापड़े दे दे के जिवें प्यो पुत्र नूं समझांदे बच्चे नूं आखदे कि मेरे पातशाह जी दे की वाक हन, आप फरमांदेन आओ चलिए श्री हेमकुंड साहब जिथे मेरे कलगीधर पातशाह जी परमात्मा निरंकार नूं जवाब दे रहे ते की आखदेन।

तो तुमसे लेना, तुम मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा

तो दिल दूजा और न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो तुर बिन दूजा और न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो क्या कहिए किस आस सुनाइए जो कहना तो सब जी पास सब कुछ कीता तेरा वरते सदा सदा तेरी आस जी दे वड़ियाई ता तेरी वड़ियाई।

जो तो करे करावे स्वामी हा मसलत परवा चरण शरण हम अनाथ ना थकन अपनी कृपा करे चरण कमल नानक आरा दे किस दिन आम की पर परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी।

0: कर शब्द विचार गुरु कर रे मन मेरे। गुरु कर शब्द सुपन अघन कटे सब तेरे। गुरु नैन पैन गुर गुर करो,
1: गुरु नैन
0: पैन गुर गुर करो। गुरु सत्य कव नल कहे, गुरु सत्य कव नल कहे, जिन गुरु न देखियो ने कियो। अगर

सतगुरु कहिंदे ने देह सदा नहीं रहनी। जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना तां इदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

जिथे दुख विच है गुणवान वे दुखी है, हर विद्वान सुखी ना हो सकिया। बीमार ते दुख विच

नानक सर वाले पूर्ण महापुरुष दस्या करदे सन। अपने कारोबार तो जान तो पहला मालक तू आ गया ले कि ऐ मालक ये काम तू करवाए। कपड़ा पहनने तो लग पहला धनवाद कर।

आप संग में बैठे हैं। यहाँ का रंग अपना है, कहीं जुआ चल रही है उसका अपना रंग है, कहीं बनिया बैठकर तिजोरी भर रहा है वो अपने आनंद में बैठा है, मौज कर रहा है। कहीं अफीम की अफीम खा के अपने आनंद में बैठा है। बाबा जी कहते हैं सबको अपना अपना रंग प्यारा लगता है। हजूर कहते हैं

भूखे शेर को मांस मिल जाए। झपट पड़ता इसी तरह गुरु प्यारों को सत्संगत का आनंद मिले तो भागे हुए आते हैं। भूख है ना अंदर, शेर को मांस की भूख है, बहादुर को लड़ने की भूख है। बाबा जी कहते हैं कंजूस को पैसे की भूख है, वो जमा करता ही जाता है, चाहे बेटा ना हो औलाद ना ही हो, फिर भी उसे कंजूसी की आदत पड़ी। बाबा जी कहते हैं ऐसा ही भगवान के भक्तों को इस संगत का प्यार रंग, जहाँ जहाँ पर प्रभु ने लगा दिया वो वहीं लगा।

कतहु सुचे तुह के चेतना को चार किया, कतहु अचिंत हो के सोवत अचेत हो। साहिब गुरु गोविंद सिंह साहिब जी बहुत प्यारी रचना अकाल उस्तत विच फरमान दी, कतहु सुचेत हो के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत हो के सोवत अचेत हो। कतहु

आओ भाई, आज दे दिन अरदास करिए। पातशाह, साडे हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलदी है उस नूं मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने भाई कन्हैये उते, जिस वेले उसने दुश्मन नूं दुश्मन ना समझिया, फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें, गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होई, ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहो सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दियो, कोई नहीं देगा। पर जे तुसी खड़ के कह दियो आओ लोको मैं तुहानूं प्यार दियां, हजारां लोग तुहाडे कोल आ। ये पहल तू करनी है। प्यार असां देना है, लेना नहीं। देवे तां ठीक है, पर असीं कहंदे आ इन्हें फतेह नहीं बुलाई, असीं क्यों बुलाईए। ना भाई, वो नहीं बुलांदा, तू बुला ले, तू प्यार कर, तेरा फर्ज है। हंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह, जिवें तुसीं मलम ते पट्टी दे दित्ती सी, मानो गाउंदा गाउंदा यही कुछ कह रहा सी। भावे कोई मोमन वेख रहा है, भावे कोई पहाड़ी राजा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, पानी मुंह विच देंदा होया एक कोई पुकार है, केड़ी

गायत्री को गुपत जप्यो, कहूं होय के तुरका पुकारे बांग देत हो, कहूं को कुकाब होय के पुराण को पढ़त मत, कतहू कुरान को निदान जान लेत हो, काऊ बेदरीत काऊ तांस्यों बपरीत, काऊ त्रिगुण अतीत काहू

कऊ देवतान के दीवान में विराजमान कऊ दानवान को गुमान मत देत हो। कहूं देवतान के दीवान में विराजमान कहूं दानवान को गुमान मत देत हो। कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो। कतहूं

कछ पाहन में परमेश्वर नाही। अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे,

लाख भगत जा को आराधे, लाख तपीस तपगी साधे, लाख जोगीस करते जोगा, लाख पोगीस भोगे भोग, तेरा अंत न पारा बादिया, तेरा अंत न पारा बादिया।

रंग के फरंगाबाद, बंग के बंगाली, फरंग के फरंगाबाद, दिल्ली के दिलवाली, तेरी आज्ञा में चलते तेरा अंत न पारावार या। रो के रुगेले मग देश के मंगेले भी बंगसी बंगेले पाप पुंज को मालित है, गोखा गुन गावे गोखा गुन गावे।

தள்ளி விடுவாரு. धरती से ज्यों ज्यों संकट आए, जिन्ना के संकट उन्नी की शक्ति निरंकार ने दे के भेजना अवतार उन्नी की शक्ति. समा होया ते मच्छ अवतार आया, समा होया ते कच्छ अवतार आया, समा होया ते नरसिंह अवतार आया, समा होया 14 कला जिनी शक्ति लोड़. पहली विशेषता आई कि समा एहोजा जो बनया कल युग बिच, निरंकार ने फिर आप आना किया है गुरु नानक के रूप. पहली विशेषता आई. बाकी अवतार ज्यों जिवें आए तिवें तिवें ड्यूटी देके जांदे रहे. ये पहली विशेषता ही गुरु प्यारे गुरु नानक प्यारे आख सतनाम. दसवें जामे तो बाद फिर शब्द रूप विच सदा लई धरती ते टिकदे दुनिया दे बेड़े बने लाण लई. जिस दिन तुहाडी अख खुलेगी उस दिन पता लगेगा कि इस शब्द रूप विच ग्रंथ साहब गुरबाणी का जिन्हां ने ओट आसरा लिया, इस बाणी ने पता नहीं किन्या कनू ब्रह्म ज्ञान की अवस्था च भेजा. इस बाणी ने पता नहीं किन्या नू अनुभवी प्रकाश इसकी प्राप्ति हुई है. ये बाबा हरनाम सिंह पुछो मंडी आले रसना ते इन्नी ताकत आ गई जो कहना सो सत. इसकी शुरुआत कितों हुई, बैटरी कितों चार्ज हुई, दरबार साहब की परिक्रमा विच छोटी उम्रे 7.5 लाख पाठ जपजी साहब जी दे गुरु ने सेवा ली.

0: आन बहुत मिल बैठत। जदों सुखां दे साधन होंदे हन, चार पैसे पले होन मनुख दे, ता बहुत लोग रिश्तेदार सज्जन मित्र आके घेरते हैं। रहस चौहू दिश घेरै, हर एक मनुख चाहुंदा भी मैं इस दी प्रसन्नता लवां। ते जदों धन दौलत पदार्थ मुक जांदे हन, ता फिर विपत परी सब ही संग छाड़त। कोई दुख आ लगे, मुसीबत पै जाए, धन दौलत चले जान, ते फिर रिश्तेदार भी मुख मोड़ जांदे हन, सज्जन मित्र भी मुख मोड़ जांदे हन। बल्कि परों कोई आ रहा होवे वेख लवे, ते पासा वट के पासे चला जांदा भी किदे कुछ मंग ही ना दवे। उचारण करो श्री
1: वाहिगुरु।
0: इसे लई हजूर बाणी विच बख्शिश कर रहे हन, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहू दिस घेरै, विपत परी सब ही संग छाड़त। को ना आवत नेरै, घर की नार बहुत हित जांसो। बड़ा हित होंदा है मनुख चंगे तो चंगी वस्तु घर वाली वास्ते लियाउंदा, चंगे तो चंगा वस्त्र। कितने भी कूड़ कुशत गुनाह करने पैन, घरवाली नूं खुश करन लई ए सब कुछ करदा है। पर जदों विपता पै जावे तां घरवाली भी मुख मोड़ जांदी है। हजूर दी बाणी कह रही है कि घर की नार बहुत हित जांसो, सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजी ए काया, प्रेत प्रेत कर भागी। ए झूठा व्यवहार झूठियां प्रीतां संसार दियां, हजूर कहंदे ने ए इथों तक भी नहीं निबदियां, दरगाह विच किथे कोई जाएगा भाई, किथे कोई तेरी सहायता करेगा। जां को मुश्किल अत बने, ढोई कोई ना दे, लागो होए दुश्मना, साक भी भज जांदे हन जदों मुश्किल बन जांदी है। धन गुरु अर्जन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं।